अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

ಭಾಗನಾ ಯಮದೂತ್

0: 스리랑
1: 예 스리랑
0: 예 스리랑

पुत है श्री गोविंद गीता अध्याय 6 आत्मसंयम योग। श्री कृष्ण संन्यास एवं योग की समानता एवं फल तृष्णा के त्याग पर बल देते हैं। प्रभु कहते हैं कि वशीभूत मन ही मानव का परम मित्र होता है तथा वशहीन होने से मन ही परम शत्रु बन जाता है। श्री गोविंद कहते हैं कि सतत यत्न व योग अभ्यास से इस हठी व चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है।

अर्जुन का संशय दूर करते हुए ऋषिकेश कहते हैं कि साधन के अभाव में श्रद्धावान किंतु असिद्ध पुरुष एक उच्च सदाचारी परिवार में पुनः जन्म लेता है, जहां वह पूर्व जन्म के बुद्धि संयोग से सिद्धि प्राप्ति हेतु आगे प्रयत्न करता है।

अपने देश भारत की प्रमुख नदी गंगा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की प्रतीक है। युगों युगों से भारत के आध्यात्म और वैराग्य को सींचने वाली अनवरत अमृत धार है गंगा।

0: हमारी आस्था, हमारे जीवन, हमारी ऊर्जा और उल्लास की नदी है गंगा। पवित्रता और निर्मलता की जलधार है गंगा।
1: मानव के पंचकर्मों में एक है गंगा, शिव का रूप है, विष्णु का अंश है, ब्रह्म पोषित है गंगा।

0: गंगा वो नदी है जो मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं को भी प्रिय है। महाकाल, मृत्युंजय, महासत्य, महादेव शिव की प्रिय है गंगा। उनके पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को अस्तित्व प्रदान करने वाली गंगा ही है। तभी तो गणेश को गंगे भी कहते हैं।
1: गंगा के किनारे ही महात्मा बुद्ध को बोधि गति प्राप्त होती है। अपने पांच शिष्य मिलते हैं। रामायण की कथाओं में गंगा कभी प्रभु राम और केवट के मिलन की साक्षी बनती है, तो महाभारत में शांतनु की पत्नी और भीष्म पितामह की माता बनकर सामने आती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं नदियों में गंगा हूँ।
0: गंगा अवतरण से जुड़ी कई रोचक कहानियां हैं। शिव पुराण के अनुसार गंगा हिमालय की पुत्री और पार्वती की बड़ी बहन है। जब भगवान शिव अपनी पहली पत्नी सती के बलिदान के बाद मानसिक संताप से गुजर रहे थे, तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने शिव का पुनर्विवाह गंगा से करा दिया।
2: हर हर गंगे, गंगे, हर हर गंगे, गंगे।
1: मान्यता है कि गंगा ब्रह्मलोक से शिव की जटा में आई, परंतु शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया। राजा भगीरथ के अनुरोध पर उन्होंने अपनी जटाएं निचोड़ कर छोड़ी, जिससे अनेक धाराएं निकली।

0: इनमें तीन प्रमुख हैं, अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी। शिव ने अपनी जटा से एक धारा पृथ्वी पर उतारी जिसे मंदाकिनी नदी मानते हैं। दूसरी धारा स्वर्ग चली गई जिसका नाम अलकनंदा हुआ। यही धारा स्वर्ग से उतरकर बद्रिकाश्रम से प्रवाहित होती है। तीसरी धारा भागीरथ के रथ के पीछे चलकर देव प्रयाग आई और भागीरथी कहलाई।
1: भागीरथी नाम की इस जलधारा का संगम देव प्रयाग के पास अलकनंदा से होता है। फिर आगे बढ़ती ये सरिता तीर्थ रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी को समाहित करती है। यहीं से इस निर्मल जलधारा का नाम गंगा।

हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की दशमी को पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ है। ये दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा में लगाई एक डुबकी पापों से मुक्ति दिला देती है।

0: करो।
1: हे माँ गंगा, हे यमुना, हे सरस्वती, हे नर्मदा और सिंधु कावेरी, सभी कृपा करो और प्रकट हो इस जल में, जिससे मैं अपनी शुद्धि कर सकूं।
0: गंगा अवतरण की कथा का आधार भागीरथ ऋषि द्वारा अपने पूर्वज रघुकुल राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति दिलाना है, जो कपिल मुनि के शाप से भस्म हुए थे। सगर के पुत्र जहां ऋषि के शाप से भस्म हुए, वो पश्चिम बंगाल में स्थित गंगा सागर नामक स्थान है, जहां गंगा सागर की गोद में समा जाती है। गंगा देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। गंगा नदी नहीं बल्कि एक संस्कृति है। पुराणों में पावन पतित पावनी पाप तारिणी गंगा को माँ का स्थान दिया गया है। गंगा हमारी भारतीय सभ्यता का रूप है।
1: उत्तर भारत में हिममंडित हिमालय के गोमुख नामक स्थान से निकलकर लगभग 2500 किलोमीटर तक दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर गंगा सागर के पास बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। गंगा
0: उत्तराखंड से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है गंगा, और अपनी सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। सबसे पहले बात गंगा नदी बेसिन के महत्व की बता रहे हैं जल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. पांड्या।
2: गंगा बेसिन जो है हमारा, वो देश का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, जिसमें कि हमारी सबसे ज्यादा जनता भी वहाँ रहती है, और साथ ही साथ में ऑलमोस्ट हमारे कंट्री का करीब करीब 43% जितना एरिया को वो कवर करता है, और उसका पानी जो है वो, जो कि अल्टीमेटली हम उसको, जिसको गंगा नदी के रूप में जानते हैं, उसमें फरक्का तक जाके मिलता है, और करीब करीब साल में एवरेज 525 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी उसमें एवरेज जाता है। गंगा जो है वो हमारी एक जीवनदायिनी नदी है, और उसके ऊपर हमारा बहुत बड़ा आधार है, हमारे खाद्य सुरक्षा के लिए और हमारी पानी की सुरक्षा के लिए।
1: हिमालय की पहाड़ी ढालों से नीचे उतरकर पावन तीर्थ नगरी हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है गंगा। हरिद्वार में गंगा घाट पर गंगा स्नान के लिए तीर्थयात्रियों की भीड़ लगी रहती है।
0: हरिद्वार के आगे उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में गंगा की धारा का स्वरूप बदलने लगता है। अपनी कई सहायक नदियों की जलराशि प्राप्त कर लेने से इसके जल प्रवाह में विशालता आती है।
1: गढ़ मुक्तेश्वर से दक्षिण पूर्व की दिशा में गतिमान होती गंगा की धारा संगम नगरी प्रयाग पहुंचती है, जहां गंगा, यमुना और अंतःसलिला सरस्वती का संगम

0: त्रिवेणी से अपनी सहभागिनी यमुना की विशाल जलराशि अपने में समेटकर गंगा पूर्व की दिशा में बहती हुई भारत की गौरवमय संस्कृति की प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध काशी नगरी पहुंचती है। काशी, जिसका आधुनिक रूप में प्रचलित नाम बनारस या वाराणसी है, संसार के प्राचीनतम सजीव नगरों में से एक है और गंगा तट पर बने अनगिनत घाटों के लिए सारी दुनिया में मशहूर है।
1: माना जाता है कि काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, इसलिए इस शिवप्रिया नगरी में गंगा का भव्य स्वागत होता है।

0: गंगा के तटों की महिमा और गंगा की सांस्कृतिक विरासत पर डॉक्टर के आर शर्मा की बात याद आ गई। आप भी सुनिए।
1: हमारे हिंदू धर्म में जो भी कार्य है वो गंगा से जुड़ा हुआ, जो जीवन यापन है वो उसमें समय समय पर गंगा जल का योगदान होता है। अगर आप देखें तो बच्चे के पैदा होने के बाद जब उसका यज्ञोपवीत किया जाता है तब भी गंगा जल की उपयोगिता होती है। कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसमें गंगा जल की उपयोगिता होती है। सांकेतिक रूप में उसको हम लोग उपयोगिता में लाते हैं। आप देखेंगे कि जब मरने वाले होते हैं तब भी लोग गंगा जल अपने घर में रखते हैं ताकि उसके मरने से पहले उसके मुख में गंगा जल के कुछ बूंदे चली जाएं तो उसके जीवन पवित्र हो जाए। साथ में ये भी आप देखेंगे कि उसी गंगा के तट पर लोगों की इच्छा होती है कि हमारी अंतिम संस्कार भी उसी गंगा के किनारे हो। तो जीवन के शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक गंगा की महत्ता हिंदू समाज में आप पाएंगे।
2: तीन लोक से न्यारी काशी, ये कहावत सदियों से प्रचलित है जो काशी नगरी के न्यारेपन को उजागर करती है। गंगा के महत्व को बखान करती हुई पूर्व प्राध्यापिका डॉक्टर इंदिरा शर्मा कहती हैं,
3: गंगा के जल में कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जिनके कारण हम इस नदी को एक पवित्र और अमृत तुल्य नदी मानते हैं। हम अपनी जो जर्नी है उसको अगर हम ऋषिकेश शुरू करते हैं तो वहीं से ये गंगा जो है एक तीर्थ के रूप में हमारे सामने उभर कर सामने आती है। यद्यपि जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ तो तीर्थ है ही, गोमुख तीर्थ है ही, लेकिन विशेष रूप से जहाँ तक जन साधारण इस तक पहुँचा है उसको हम ऋषिकेश से मानते हैं। जहाँ पर ये मैदानी भाग में आती है, यद्यपि इसकी जो धारा है बड़ी तीव्र गति से बहती है, लेकिन इसके किनारे मंदिर, आश्रम, ऋषियों के आश्रम रहे हैं जहाँ पर लोगों ने वेद ऋचाएं गाई हैं, अपने धार्मिक ग्रंथ लिखे हैं, वहाँ से इसकी महत्ता जो है वो शुरू होती है। हमारे जीवन में ये इस कदर रच बस गई है कि हर भारतीय का ये सपना होता है कि जीवन में वो गंगा के किनारे जाए, उसमें स्नान करे और उसको ऐसा विश्वास है कि उसके जितने पाप हैं वो सारे धुल जाते हैं और उसकी आत्मा जो है पवित्र हो जाती है।
2: मंदिर, मस्जिद, पंडे, पुजारियों के इस शहर में विभिन्न संस्कृतियों के रूप देखने को मिलते हैं। एक ओर काशी विश्वनाथ और संकट मोचन का दिव्य स्थान है तो दूसरी ओर कबीर चौरा और संत तुलसीदास का तुलसी घाट। नृत्य विशारद बिरजू महाराज हो या शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां, महान साहित्यकार भारतेंदु और महाकवि जयशंकर प्रसाद इसी नगरी के निधि रहे हैं। महामना मदन मोहन मालवीय की देन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यहीं गंगा तट पर स्थित है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां रोज सुबह अपनी शहनाई गंगा जल से धोते थे। उन्हें गंगा बहुत प्रिय थी। जब भी बनारस में होते थे तो गंगा को अपनी शहनाई सुनाना नहीं भूलते थे।
0: भारतीय साहित्य भी गंगा के स्तुतिगान से अछूता नहीं रहा है। कई रचनाएं

0: पितं महेश्वर्यं लीला जनित जगत खंड परशो।
1: तीर्थ नगरी काशी के मनोरम घाटों से आगे प्रवाहित होती हुई गंगा धारा मालवीय पुल से आगे मुगल सराय होती हुई बिहार प्रदेश में बक्सर पहुंचती है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने गुरुदेव के साथ जनकपुर स्वयंवर में जाने के लिए यहीं से गंगा को पार किया था, जो अब रामघाट के नाम से प्रसिद्ध है।

0: बक्सर से आगे चलकर गंगा पहुंचती है पटना, यानी बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र। मंद मंद गति से पूरब की ओर प्रवाहित होती गंगा की धारा पटना पहुंचने के पहले सरयू और सोण नदी की जलधाराओं को भी अपने में समेट लेती है।
1: दीपावली के 6 दिन बाद जब छठ पूजा मनाई जाती है तो यहाँ गंगा के घाटों पर आस्था और विश्वास की एक अद्भुत छटा देखने को मिलती है।
2: छठ की पूजा में गंगा के अंदर हम खड़े होकर पूजा करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, तो गंगा मैया से भी मांगा जाता है, केवल सूर्य से नहीं।
1: आप हैं प्रसिद्ध लेखिका और संपादक डॉक्टर मृदुला सिन्हा।
2: मांग होती है सब चीज की, और उसमें अन्न है, जल है, धन है, सब कुछ मांगते हैं, लेकिन गंगा से भी मांगते हैं और सूर्य से भी मांगते हैं। वहाँ दोनों को समान आसन पर बैठा दिया जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि गंगा को लोक जीवन से और संस्कृति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। और सही बात तो यह है कि गंगा हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ी प्रतीक है, जो इसकी अविरल धार है, और वो बहती रही है, बहती रहेगी।

0: गंगा परिवहन का जरिया रही है, अब भी है। गंगा के इस पक्ष के बारे में विस्तार से बताते हुए पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और लेखक श्री दुर्गादास गुप्ता।
1: नेशनल वाटरवे की तरह है, आज से नहीं हजारों साल से। छोटे नाव, बड़े नाव, सब पे चल करके लोग जाते आते थे, उनकी यात्राएं हुआ करती थी, लोग जाया करते थे, माल ढोया जाता था। उसका आज भी उदाहरण ये है कि छोटे छोटे इस ज़माने में भी बजरे पे सामान लेकर के लोग जाते हैं, लेकिन जगह जगह चुके इतना बॉटल नेक आ गया है नदी में कि अब वो आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन इसी संदर्भ में मैं ये कहूँ कि अगर रेलवे के ऊपर, सड़क के ऊपर से अगर आपको भीड़ कम करनी है तो एक विकल्प के रूप में आपको देखना चाहिए कि जो लोग आराम से चलना चाहते हैं, आराम से देखना चाहते हैं भारत को या भारत के इस हिस्से को, तो उनको बजाय पैलेस ऑन व्हील्स के या राजधानी के, वो गंगा को इस तरह से विकसित करना चाहिए ये यात्रा करने का कि लोग उसको, उसका सुखद अनुभव ले सकें और लोग समझ सकें कि हमारी परिपाटी क्या है, हमारी परंपरा क्या रही है, गंगा का महत्व क्या है इस बारे में। क्योंकि जब तक हम इसको हरिद्वार से लेकर के और नीचे हुगली तक नहीं जाते हैं तो हम गंगा कितनी महान है, गंगा की क्या आवश्यकता है, गंगा कैसी थी, कैसी है, कैसी होनी चाहिए, ये हम उस दृष्टिकोण को नहीं विकसित कर पा रहे हैं। और जहाँ तक गंगा के सफाई की बात है, गंगा जब तक साफ नहीं होगी तो परिवहन उसके ऊपर नहीं हो पाएगा।

0: और नई टेक्नोलॉजी से गंगा को साफ करना होगा, ड्रेजिंग होनी चाहिए, फ्लोरा फौना को बचाना चाहिए और उसके ऊपर परिवहन जो हो, पैसा जो खर्च हो, उससे कमाई हो, उसका एक अलग कोष बने और गंगा को और दूसरी नदियों को धीरे धीरे करके उस कोष से जोड़ देना चाहिए।
1: नदियों को जोड़ने और उन्हें परिवहन का एक माध्यम बनाने की प्रक्रिया पर सोच विचार किया जा रहा है। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में गंगा के बारे में श्री दुर्गादास गुप्ता आगे कहते हैं,
0: हजारों हजार साल से ये वाटर हाईवे था और रही है, जिसका उपयोग होता रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई हमारे पास इसका रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि अगर गंगा को समझना है, गंगा के बारे में बात करनी है, गंगा की महत्ता समझनी है आध्यात्मिक दुनिया से बाहर निकल करके, तो सबसे पहले एकेडमिक वर्ल्ड को ध्यान देना पड़ेगा कि गंगा के ऊपर या नदियों के ऊपर स्कूल ऑफ स्टडीज़ बने। काफ़ी जियोलॉजिकल डेटा है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री बहुत है, लेकिन वो स्टडी जो इन डेप्थ स्टडी, जो सघन अध्ययन होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है।

पटना शहर गंगा तट के दाएं किनारे पर दीघा घाट से लेकर पूर्व में फतुहा तक फैला है। इसे विशाल साम्राज्यों की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त और महान गुरु चाणक्य की कर्म भूमि रहने का संयोग इसी पाटलिपुत्र को मिला। चंडाशोक से अशोक बना मगध का सम्राट यहीं गंगा तट से अहिंसा और करुणा का संदेश दे गया।

0: सोनपुर और हाजीपुर के बीच गंगा में आकर मिलती है नेपाल में हिमालय से निकलकर आने वाली गंडक नदी। यही वो स्थान है जहां हर साल विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है।
1: तो हर महिमा आगमा अपार है गंगा मैया।
0: अनेक छोटी बड़ी नदियों की विशाल जलराशि लेकर गंगा अपने स्वरूप का विस्तार करती है और पहुंचती है सुल्तानगंज। यहाँ की विशेषता और गंगा के बारे में बताते हुए पूर्व राजदूत और सांसद डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस कहते हैं,
2: भागलपुर जिला में गंगा का महत्व सुल्तानगंज के गंगा से है। गंगा जब चलती है हरिद्वार से बंगाल की खाड़ी की ओर, तो दो जगहें ही ऐसी जगह है जहां उत्तर वाहिनी गंगा है, एक तो बनारस में और एक सुल्तानगंज में। उत्तर वाहिनी गंगा का बहुत ज्यादा महत्व है। लोग वहां यदि स्नान कर लेते हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें असीम शांति प्राप्त हो गई। अभी भी हर साल लाखों लोग सुल्तानगंज से पैदल देवघर जाते हैं और बाबा बैद्यनाथ के ऊपर सुल्तानगंज का पवित्र गंगा जल चढ़ाते हैं। सुल्तानगंज का पहले नाम गंगा धाम था। औरंगजेब ने इसका नाम बदलकर सुल्तानगंज कर दिया, जहां उसके फौजी छावनी डालते थे और वहीं से वो लोग बंगाल आसाम पर कूच करते थे। सुल्तानगंज में ही लोग कहते हैं अजगबीनाथ मंदिर में जहन मुनि रहा करते थे, जिनके नाम पर गंगा का नाम वहां से जाह्नवी पड़ा। एक बार किंवदंती है कि जहन मुनि ने गंगा को पी लिया, क्योंकि गंगा बहुत किलोल करती थी। भागीरथ ने बहुत अनुनय विनय किया, तब जहन मुनि ने गंगा को अपने जांग को चीर कर गंगा को निकाला। अभी भी सुल्तानगंज के बगल में एक गांव है जिसका नाम जहन मुनि पर है और अपभ्रंश होते होते अंग्रेजों के टाइम में इसका नाम जहांगीरा पड़ गया। बहुत ही भव्य दृश्य।

0: है सुल्तानगंज की गंगा का, और देवघर की कल्पना नहीं कर सकते हैं यदि सुल्तानगंज की गंगा का जल वहाँ नहीं पहुँचे। सुल्तानगंज और देवघर का संबंध बहुत ही निकटतम है।
1: संस्कृति और विधा वैभव का केंद्र भागलपुर से आगे पूर्व की ओर स्थित है फरक्का बराज यानी गंगा नदी पर बना विशाल जल अवरोधक। एक समझौते के अनुसार गंगा जल का एक उचित हिस्सा बांग्लादेश की ओर प्रवाहित किया जाता है।
2: फरक्का से आगे गंगा की शेष धारा हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुँचती है। यहाँ इसके किनारे स्थित है माँ काली का प्राचीन और विशाल दक्षिणेश्वर मंदिर, जो रामकृष्ण परमहंस की साधना स्थली भी रहा है।
1: पर्वतराज हिमालय से निकलकर लगभग 2500 किलोमीटर का प्रवाह पथ तय करने के बाद गंगा की धारा पहुंचती है डायमंड हार्बर, जिसके आगे बंगाल की खाड़ी का लहराता सागर और सुंदरी वृक्ष वाले सुंदर वन के जंगल फैले हैं।
2: गंगा कई हिस्सों में बढ़ती हुई धरती लोक पर अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव गंगा सागर पहुँचती है। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां माँ गंगा ने भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया था।
1: इस स्थान का बहुत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। मकर संक्रांति के दिन यहां लाखों लोग स्नान करने आते हैं, तभी तो कहा जाता है कि सभी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। भारत में अनादिकाल से ही गंगा जीवन दायिनी और मोक्ष दायिनी रही है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और अस्मिता की प्रतीक रही है। उसकी अविरल और निर्मल सतत धारा के बिना भारतीय अस्तित्व और संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती।

0: स्वर्ग से धरती पर उतरकर सभी को अपने आंचल में समेटती, दोष मुक्त करती, अभय दान देती गंगा सागर से मिलकर पाताल लोक चली जाती है और त्रिलोक गामिनी बन जाती है। जो मानव कल्याण के लिए धरती पर उतरती है वो गंगा है, जो मानव को स्वर्ग तक ले जाती है वो गंगा है।
1: सदियों से भारत की धरती पर बहती हुई गंगा इस देश की पहचान बनी हुई है, पर अफसोस की बात यह है कि वही गंगा अब अपनी पहचान खोती जा रही है।

0: गंगा थक रही है, मर रही है।
1: गंगा बहती हो क्यों?
0: अपनी अज्ञानता, लालच और स्वार्थ से हमने इसे इस हद तक प्रदूषित कर दिया है कि आज मोक्षदायिनी गंगा अपने मोक्ष के लिए हमसे मदद मांग रही है। समय आ गया है संकल्प लेने का, गंगा को फिर एक बार अनवरत अमृत धार बनाने का।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन।

0: महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: शिव महिमा, महिमा।
1: प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव महिमा।

0: भगवान महादेव की महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि किस प्रकार कुबेर को भगवान शंकर की कृपा का सनातन पद प्राप्त हुआ और किस तरह भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान चुना। आज के कार्यक्रम में हम आपको कामदेव और रति के विवाह का प्रसंग सुनाएंगे। ये कथा शिव पुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड में वर्णित है। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: महाभाग सूद जी।

0: अरे ये कैसा प्रकाश पुंज है?
1: हाँ मरीची, और इस पुंज में से एक अद्भुत और दिव्य नर प्रकट हुआ है।
0: प्रजापति दक्ष, इसका ओज सहस्त्र सूर्यों के तेज से भी अधिक प्रकाशमान है।
1: अरे
0: देखो तो, इसके शाल कंध, बलशाली भुजाएं, वज्र समान कठोर बाहु।
1: मुनि श्रेष्ठ भृगु, मानो संपूर्ण सृष्टि का पुरुषत्व इसकी देह में समा गया हो।
0: हाँ, मत वाले गज जैसी चाल, खिले हुए कमल समान नेत्र,
1: करों में पुष्प धनुष और पांच पुष्प बाण।
0: अरे देखो तो, अब वो पितामह ब्रह्मा के सम्मुख नतमस्तक हो रहा है।
2: हे जन्मदाता, मेरा नमन स्वीकार करें।
3: हजर अमर भव।
2: आज्ञा करें, मेरा जन्म किस निमित्त हुआ है, मैं कौन सा कार्य करूंगा?
3: वत्स, अपने इस मोहक रूप तथा इन पांच पुष्प बाणों से तुम नर नारियों का मन मोहते हुए सृष्टि के सनातन कार्य का संचालन करोगे। तुम्हारा ये कर्म सृष्टि का नियामक होगा।
2: जो आज्ञा दे, कृपया मुझे मेरे नाम से भी अवगत कराएं।
3: ये कार्य मेरे ये पुत्र करेंगे।
4: पुत्रो,
5: जी पितामह।
3: इस देवात्मा का नामकरण करो।
5: जैसी आज्ञा दे।
0: जन्म लेते ही तुम हमारे मन को मचने लगे हो, अतः मैं ब्रह्मा पुत्र मरीचि तुम्हारा नाम मन मत रखता हूं।
6: अति उत्तम, तुम में लोगों को मद मत

0: मेरी दिव्य पुत्री रति अत्यंत रूपवती है। गुण और धर्माचरण में भी वो कामदेव के सर्वथा उपयुक्त है।
1: दक्षराज, तुम्हारा यह विवाह प्रस्ताव हर प्रकार से उत्तम है। कामदेव,
2: आज्ञा प्रभु।
1: तुम दक्ष पुत्री रति का पत्नी के रूप में वरण करो।
2: जो आज्ञा परमपिता।
3: देवी रति, इस मिलन की रात्रि में हमें अपने अनन्य रूप लावण्य का दर्शन तो कराइए। रति, आपके संकोच ने हमें और भी मोह लिया है। आपकी ये लज्जा सृष्टि की हर नारी का आभूषण बनी रहेगी। आप तो वास्तव में विधाता की अप्रतिम रचना है। आपको अपनी पत्नी के रूप में पाकर आज मैं पूर्ण हुआ।
4: देव
3: रति,
4: आपको पति के रूप में पाकर मेरा जीवन भी सार्थक हुआ।
3: रति, हमारा ये पावन मिलन आज से हर नर नारी की संपूर्णता का द्योतक होगा। नर नारी के हृदयों में पवित्र प्रेम की लौ प्रज्वलित करेगा।
4: और यही प्रेम सृष्टि के सनातन कार्य का उत्प्रेरक बनेगा।
3: देवी, निष्कपट प्रेम मेरा और निष्काम आसक्ति आपका पर्याय होंगे।
4: आप निश्चल प्रेम की अविरल धारा होंगे और मैं उस धारा को ग्रहण करने वाला पात्र।
3: मैं सुर असुर और मनुष्य की भावी उत्पत्ति का साधन बनूंगा और आप मेरी अर्थात काम की साधक होंगी।
4: किंतु देव, यदि कोई सुर असुर अथवा मनुष्य इन पवित्र शक्तियों का दुरुपयोग करे तब
3: तो वो पाप होगा देवी, और उसका दुष्परिणाम उसे भोगना होगा।
4: देव, आपका कथन अत्यंत श्रेयस्कर है।
3: आओ देवी, इस क्षण को भविष्य का बीज तत्व बनाएं।

0: शौनक जी, कामदेव रति विवाह के पश्चात ब्रह्मा जी तथा उनके मानस पुत्र अपने अपने धाम को लौट गए। चहुं ओर आनंद का वास था, परंतु विधि का विधान तो कुछ और ही था। एक बार देवी संध्या के मन में सकाम विचार आ गया।
1: महाभाग सूत जी, उन साध्वी के मन में?
0: हाँ, इस विचार मात्र से वे आत्मग्लानि से भर उठी। पश्चाताप स्वरूप संध्या ने घोर प्रतिज्ञा कर डाली।
2: ये मेरे शरीर में विचित्र सा कंपन क्यों? ये मुझे बार बार उद्विग्न करता कोई अनाम विचार? ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इसे संयमित क्यों नहीं कर पा रही? मेरे रोम रोम को सिहराती ये काम भावना, नहीं, ये पाप है। मेरा अपने ही मन पर कोई वश नहीं रहा। मेरा संयम समाप्त कैसे हो गया? नहीं नहीं, मेरा ये शरीर दूषित हो गया है। मुझे इस तन का त्याग कर देना चाहिए। जिस तन पर, जिस मन पर अपना वश नहीं, वो त्याज्य है। मेरा शरीर त्याज्य है।

0: पुत्री संध्या, प्रतिज्ञा करती हूँ कि काम को मर्यादित करने के लिए कठोर तपस्या करूंगी, ताकि जन्म लेते ही प्राणियों के मन में काम भाव उत्पन्न ना हो। तपस्या पूर्ण होने के पश्चात अग्नि में मैं अपनी देह की आहुति दे दूंगी।
1: देवी, अपने ललाट पर उभरी चिंता की इन रेखाओं का कारण बताएं देवी।
0: हे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी, आवेग में आकर मैंने तपस्या का संकल्प तो ले लिया, परंतु मुने, तपस्या के विधान से मैं अनभिज्ञ हूं। हे ब्रह्म शिरोमणि, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे तपोभाव की दीक्षा दीजिए।
1: देवी, जिस उद्देश्य से आप तपस्या कर रही हैं, उसे मात्र भगवान शंभु ही साध सकते हैं, अतः उन्हें अपने हृदय में स्थापित कीजिए। एकाग्रचित से केवल उनका ध्यान कीजिए। वे ही सर्वात्मा हैं, वे ही सर्वस्व हैं। उनके पुण्य प्रताप का स्मरण कीजिए।
0: धन्यवाद महामुने, आपसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर मेरा चित्त शांत हो।

0: देवाधिदेव, आपकी तंद्रा भंग क्यों हो गई?
1: ब्रह्मा पुत्री संध्या के जाप से, देवी उमा।
0: संध्या के जाप से? परंतु प्राणेश, वो तो विगत 4 युगों से इस तपस्या में लीन है। आज यकायक आपका ध्यान उसकी ओर कैसे आकृष्ट हो उठा?
1: देवी उमा, हर बात का एक देश, काल निर्धारित होता है। अब समय आ गया है कि संध्या को उसके परिश्रम का फल प्राप्त हो।
0: तो विलंब कैसा महादेव? जाइए, संध्या को प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए।
1: जैसी आपकी इच्छा देवी।

मेरे समक्ष अचानक ये प्रकाशपुंज कैसे उत्पन्न हो गया और इसमें से तो स्वयं मेरे आराध्य प्रभु शिव शंकर प्रकट हो रहे हैं। मैं धन्य हुई, मैं धन्य हुई।

0: ब्रह्मा पुत्री संदेह, तुम्हारी कठिन तपस्या से हम प्रसन्न हुए। इच्छित वर मांगो संदेह।
1: प्रभु, आप सर्वज्ञाता हैं। मैंने काम को मर्यादित करने के उद्देश्य से ही आपकी आराधना की है।
0: तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान

0: यौवनावस्था तथा वृद्धावस्था। तीसरी अर्थात यौवनावस्था में ही प्राणियों के हृदय में काम भाव उत्पन्न होंगे। कामोदय की यही निर्धारित मर्यादा होगी।
1: मेरी तपस्या सार्थक हुई भगवान।
0: संदेह, मैं तुम्हें ये वरदान भी देता हूं कि तुम जैसी सती साध्वी तीनों लोकों में और कोई दूसरी ना होगी।
1: मेरे अहोभाग्य देव।
0: मेरा तीसरा वरदान ये है कि एक अति तेजस्वी ब्रह्म ऋषि तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे।
1: पति रूप में? परंतु देवाधिदेव, अपनी प्रतिज्ञा स्वरूप तपस्या सफल होते ही मुझे अग्नि में अपना देह त्याग करना है, यही मेरा अभीष्ट था।
0: संदेह, तुम्हारे अभीष्ट का उत्कर्ष होना तो अभी शेष है। इसी चंद्रभाग पर्वत पर महर्षि मेघातिथि पिछले 12 वर्षों से महायज्ञ कर रहे हैं। इस अनुष्ठान में अग्निदेव अपने पूर्ण भाव से प्रज्वलित हैं। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का सबसे अच्छा अवसर यही है।
1: परंतु देव, पति
0: पति, मेरे इस वरदान के रहस्य का उद्घाटन भी वही होगा। ब्रह्मा पुत्री, मेघातिथि का यज्ञ अब अपने अंतिम चरण में है, विलंब उचित ना होगा। चलो।
1: जो आज्ञा देव।

0: प्रभु कृपा से ये तीव्र अग्नि ज्वालाएं भी कितनी शीतल प्रतीत हो रही है। उन्हीं की माया से मुझे अग्नि में प्रवेश करते कोई नहीं देख पाया।
1: हे संदे, अब तुम हृदय में उसकी छवि का ध्यान करो जिसे तुम स्वामी रूप में प्राप्त करना चाहती हो।
0: महादेव, मेरे मन में तो उन्हीं तेजस्वी ब्रह्मचारी की छवि है जिन्होंने मुझे दीक्षा दी थी और आपकी आराधना का मार्ग दिखाया था।
1: तथास्तु, उचित समय पर महर्षि वशिष्ठ ही तुम्हारा पाणी ग्रहण करेंगे। इस समय तुम सूर्य देव का आह्वान करो।
0: जो आज्ञा देवादिदेव।

0: स्वागत है सूर्यदेव।
1: प्रणाम देवाधिदेव, मेरे यहाँ आने का प्रयोजन बताएं।
0: ब्रह्मापुत्री संध्या का भावी स्वरूप आप निर्धारित करेंगे।
1: जो आज्ञा देव। संधे, अग्नि में तपाए तुम्हारे इस शरीर को मैं दो भागों में विभक्त करके अपने इस रथ पर आरूढ़ करता हूँ। आज से संपूर्ण जगत में तुम दो नामों से विख्यात होगी। तुम्हारे शरीर का एक भाग रात्रि और प्रातः का मिलन करवाने वाली प्रातः संध्या कहलाएगा। शेष भाग दिन और रात के मध्य आने वाली सांय संध्या के नाम से जाना जाएगा।
2: सूर्यदेव, मेरे इन दो रूपों का कार्य क्या होगा?
1: प्रातः संध्या के मोहक रूप में तुम देवताओं के बीच आनंद और स्फूर्ति का संचार करोगी तथा सांय संध्या के रूप में पितरों की प्रसन्नता का कारण बनोगी।
2: जो आज्ञा सूर्यदेव। अरे, प्रभु शिव शंकर और सूर्यदेव तो विलुप्त हो गए।

0: देवाधिदेव के अंतिम वरदान का रहस्य? ये क्या, मेरे शरीर का आकार और मेरी आयु क्यों घट रही है? मैं युवावस्था से शैशव में परिवर्तित हो रही हूँ। क्या यही है प्रभु के वरदान का रहस्य?
1: वत्स, यज्ञशाला के लिए समिधा की व्यवस्था हो गई?
2: महामुनि, अरुंधति वही लेने गई है।
1: अच्छा, क्या तुमने उसे भेजा है?
2: नहीं देव, आश्रम के हर कार्य के बारे में उसे पता है। वो तो स्वयं ही।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो इतनी कर्तव्य परायण और अपने दायित्व के प्रति सचेत है।
2: हाँ देव, आपने उसे शिक्षा भी तो ऐसी ही दी है।
3: अरे अरे अरे, ठहर तो सही। अरे कहाँ भागा जा रहा है? ठहर, पहले तो यज्ञशाला में कुलांचे भरता रहा और अब।
2: अरे क्या हुआ पुत्री अरुंधति?
3: देखिए ना मुनि महाराज, पिताजी का ये प्रिय मृग शावक यज्ञशाला को अपवित्र कराया है, अब उनके कुटिया में जा रहा था।
1: पुत्री अरुंधति, क्यों सता रही हो इसे? अरे अरे अरे, देखो ना कैसे डर कर मेरी गोद में छिप रहा है।
3: ओहो, पिताजी, इसने तो आपको भी अपवित्र कर डाला है। पूजा प्रारंभ करने से पूर्व आपको भी पुनः स्नान करना होगा। लाइए लाइए, इस दुष्ट को मुझे दीजिए, इसे मैं अभी स्नान करवा कर लाती हूँ।
1: इसे स्नान? परंतु क्यों पुत्री?
3: पिताश्री, आप ही ने तो सिखाया है कि पवित्र स्थान पर जाने से पूर्व व्यक्ति को स्वयं को शुद्ध करना चाहिए।
1: किंतु ये तो मृग शावक है।
3: तो क्या ये किसी अपवित्र स्थान से नहीं आ सकता? लाइए दीजिए इसे।
1: लो लो, इसे ले जाओ पुत्री।
3: करूं करूं तेरी पिटाई? अरे तुम्हें तो आश्रम के नियम ज्ञात हैं, फिर भी तुम हटो क्या करते रहते हो?
1: हे प्रभु, मैं क्या करूं?
2: क्या हुआ गुरुदेव, आप इतने गंभीर क्यों उठे?
1: प्रिय शिष्य, अरुंधति की ये बढ़ती धर्म परायणता मुझे चिंतित कर रही है। उसके हृदय में धर्म के लिए जो स्थान है, उसमें सांसारिक जीवों के प्रति प्रेम का कोई अवकाश नहीं। भावना विहीन हृदय सांसारिक दृष्टि से पूर्ण कैसे हो सकता है? कहीं वो निर्दिष्ट सांसारिक कर्मों से विमुख ना हो जाए।
2: गुरुदेव मेघातिथि, अनुमति हो तो मैं कुछ कहूं?
1: कहो शिष्य।
2: पुत्री अरुंधति का विवाह ही उसे सामाजिक नियमों का पालन करने को प्रेरित कर सकता है।
1: ये विचार तो कई बार मेरे हृदय में भी आया है, परंतु।
2: परंतु क्या मुनि श्रेष्ठ, हमारी अरुंधति तो सर्वगुण संपन्न है।
1: यही तो समस्या है, उससे अधिक गुणी और योग्य पति कहां मिलेगा?
2: महामुनि, जिन खोजा तिन पाइया, खोजने से तो प्रभु भी मिल जाते हैं।
1: उत्तम, अति उत्तम, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब तो मेरी चिंता का निवारण मेरे आराध्य ही करेंगे। अरे त्रिदेव, एक साथ मैं धन्य हुआ।
4: मुनि मेधातिथि, तुमने हृदय से स्मरण किया तो हम उपस्थित हो गए।
1: आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु शिव शंकर।
5: मेधातिथि, हमें तुम्हारी चिंता का कारण ज्ञात है।
4: परमपिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वशिष्ठ हर प्रकार से पुत्री अरुंधति के योग्य हैं
1: भगवान,
5: और अरुंधति भी उन्हें पति रूप में पाकर शोभायमान होगी।
6: श्रीहरि का ये कथन सत्य है मुनि मेधातिथि, यही काल की नियति तथा अरुंधति के पूर्व जन्म में उसे महादेव से प्राप्त आशीर्वाद भी है।
1: जो आज्ञा त्रिदेव, जो आज्ञा।
7: और महामुनि सूत जी, इस प्रकार वशिष्ठ और अरुंधति का विवाह संपन्न करवाकर महादेव ने देवी संध्या को दिए वरदान को सार्थक कर दिया।

0: महात्मन सूत जी, कामदेव और संध्या की उत्पत्ति से लेकर वशिष्ठ अरुंधति विवाह तक का ये प्रसंग अति रोचक ही नहीं ज्ञानवर्धक भी था। फिर क्या हुआ मुनिश्रेष्ठ?
1: शौनक जी, आगे की कथा अर्थात दक्ष कथा बहुत विस्तृत है, उसे भी अवश्य सुनाऊंगा, परंतु कुछ अंतराल के पश्चात।
0: जैसी आपकी इच्छा महाभाग सूत जी।
2: श्रोताओं, शिव महिमा की आज की यह कथा शिव पुराण के रुद्र संहिता द्वितीय खंड के पहले अध्याय से 10वें अध्याय तक ली गई थी। अगले प्रकरण में हम इससे आगे का भाग प्रस्तुत करते हुए दक्ष कथा से आरंभ करेंगे।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ।

यही दाग लगा के बेटी मन।

लक्ष्मण का समझाए के राम बढ़ौले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

राजभवन का आंगन किलकारियों से गूंज उठता है। चारों भाई घुटनों के बल चल रहे हैं, माताएं बलैया ले रही हैं और राजा दशरथ झुनझुना बजा रहे हैं।

श्वेत वृषभ पर विराजेला, श्वेत वस्त्रों ने धारण करणारा, महादेव जी ने आनंद आपणारा, हे तेजस्विनी महागौरी देवी हमने शुभ पदार्थो आप। महागौरी ये पार्वती देवी एम कहवाई छे के एक समय महादेव जी पोताना आ अर्धांगना शक्ति नो परिहास विनोद मा करता काली श्यामा एम कहूं। एथी आ देवीए उग्र तपश्चर्या

दिव्य आराधना करीने अति गौर श्वेत वर्ण प्राप्त कर। एथी आ महागौरी कहवाय। महागौरी पार्वती जी तथा महादेव परमेश्वर के ये वाणी अने अर्थनी माफक संयोजित छे। इमने वाणी तथा अर्थनी प्राप्ति माटे महाकवि कालिदासे

हे भवानी गौरी, स्मशाननी चितानी भस्मनु आलेपन करनार महादेव, जेरनु विष्णु भोजन करनार दिगंबर, जटाधारी कंठे नागराज वासुकी ने हारना रूप में धारण करनार, हाथमा कपाल भिक्षापत्र धरनार भगवान पशुपति महादेव, जगदीश ने पदवी पाम्या, हा हा हा, खरेखर ये तो हे परमेश्वरी तमारा पाणी ग्रहण नी परिपाटी योजनानु फल। हे महादेवी, आप अमारा ऊपर प्रसन्न था,

जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।

भवभञ्जन भवभञ्जन गुण भवभञ्जन गुण अपमन अपन राम अपमन

காஹிக்கு நபத திக்கா.

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आरा